0: 피해 가서
1: 빨리 달려.
2: 엄마 엄마 졸졸졸
1: 락바 헬리페리 बच्चा देखिन कुकुर बिरालो जस्तो झगडा परेछ
0: त्यसले हामी त मलाई पहिला
1: सौदा लगाएर भित्रै अन्त दोषी के भएको
2: ओए इसाको त मसँग अम्बो
0: के
2: अन्त भोलि ड्राइभ पिकनिक आउदैनस्
0: आउदिन
2: जम्न
0: आउदिन आफै जा
2: साच्चै के आउदैनस्

0: का रेडियो
1: सैन्य समुदाय
0: ऑन
1: एयर
0: एप मा
1: स्मार्ट स्पीकर मा बन्नुहोस्
2: प्ले बीएफबीएस
0: यो बीएफबीएस गोर्खा रेडियो हो।

0: नमस्कार।
1: कहिए क्या सुनेंगे आप?
0: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
1: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
0: कौन है वो?
1: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें